आज सम्पर्क गर्नुहोस् आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय चरीकोट दोलखा फोन नम्बर 0949213106।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन विकास कला की जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: Che uno ni diti, mona kamene kukura uni woine.
1: Woni pare, mona kamene ni kina, burubana ya kiki kusubidasa, mopani suni alona.
0: Ya sudisi tota bidisi kopada bato, adunik design masur tayar gorinu kasate, college ebam boarding school ko dress, ro tayar ikwasa koru paunu kasate, 10% chutko pani bebasta chwa ni woine.
1: उसे भाई पाड़े गई आलाऊं नी जिला नगरों ना
0: कहाँ उन्होंने कृषि विकास बैंक अगाड़ी चानी हुई ना
2: पांडो हरु गई आलाऊं ना दैट्स इट सकी गोनी
3: साथ ही भीमेश्वर नगरपालिका भीतर का शिक्षकहरू को ड्रेस स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी को ड्रेस पाइनु का साथ ही ऑर्डर बमोजिम तैयार पार्नु परेमा मनकामना टेलर्स लाई समझनु होस्
4: प्रोपाइटर उमेश थापा थप जानकारी का लागी संपर्क 9844065293 र 9844111999

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

श्रद्धा डिजिटल रेकर्डिंग स्टूडियो को अर्को गौरवमय प्रस्तुति।